राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् गंगादि पुण्य सरितः प्रणयाति बद्धाः सद्रत्न हेम जल कुंभ शतैरिदानीं त्वां स्नापयन्ति विधिवच्च जयोग निद्रां श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् मंदार पुष्पदधि कुंकुम